सुंदर रुअनी ओ मां बालांगो डटे ना ओबे की अनोय मागे माया कार हांडीन ओबे हित किया वन जीविते पालवेनी माता वटे मंदारम रात्रि अटलियन ओब आदरे गेन थानी वचने आकिवत माटानो अनंग आदरे किया ने लोब कमाक इत अत्तट मा आदरे किया ने परित्याग ने द मामा किया ने ओ मामा किया ने क्या ना हम दे म ओ नोट वड़ा हितन ओ नोट वड़ा संगमेदी क्या ने एनिसाम वैन्ना ते तेर माकना ते देवलुत लोक करेगे ना मान रांडो ने मगे द मंग कहमती यहाँ लगे मिन्ना पुलवांग है मा मोहत कमा मंदार ना आया मटे आदरे के लिए इत ऐकियन ने ते गया ना मैं जीविते मटे अवसाने टे हम्बोनु ओयावा आयु पदिना है मात में कमा बलि महम्बे बैन्ना एक तमाई मागे कम प्रार्थना हो मंग आदरे करना मागे हुस में इवर बैन्ना तुर ससुर गानों देनों आवश्यक ने विनाद में दखवाम मागे कम प्रार्थना वो पाए मांग रोएनी